ॐ श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ विघ्नेश्वराय परराय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्थिपुरन्तकारे भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।